सीधा उन्हें अनुबंध करने को जानकारी दिए इसी एसीसी प्रीमियर कप को तैयारी चली रहे अभ्यास खेलना नेपाल मलेसिया 10 ओवर लुइस पद्धति में 9 विकेट हरा ओपनर आशीष शेख को शतक अर्जुन कुमार को अर्धशतक सहित ओपनिंग जोड़ने शानदार संग दोहोरो शतकीय साझेदारी में प्रभावलाई प्रभावशाली बनाने सफल भएको थियो। टस जितेर ब्याटिंग गरेको मलेसियाले 48.2 ओवर में 232 रन में अल आउट भएको थियो। लक्ष्य पछ्याउने क्रम में भाषा भएपछि नेपालले डकवर्थ लुइस पद्धति में 48 ओवर 228 रन को लक्ष्य पाएको थियो। यसैबीच सोनी पाखरिनको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट संघले हिजो एसीसी महिला 19 वर्ष मुनिको एसिया कप र आईसीसी महिला 19 वर्ष मुनिको विश्वकपका लागि 28 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। एसीसी महिला यु19 एसिया कप मलेसियामा वर्ष 2026 भित्र हुने तालिका रहेको छ र आईसीसी महिला यु19 विश्वकप जनवरीमा नेपाल र बङ्गलादेश

0: 是为了我们不能成长，而你也是让这个人把你为了拉萨也对比不是这个人光如果说你要行得到的。
1: 那么你现在就是说那你还想这样的工作，不算是我什么这种人工作都不是这样的。
0: 所以说我说的老你把这工作不理解工作不让你还是管你不在这儿有你。말씀하니까이제뜻스토프선생님고치게좋은거사업한말씀하니까그거소화시켜보니까이거는퓨처로만계속소화시켜보니까그래서이제또뭐이어느정도보수를했다보수를가입을가입을이렇게말하니까그사람이말씀하소비세에비가속도어디가는거겠지여기시에뜻스토프미세리때문에이미세에그뭐또다시미세하니하고는거의일주일날있어요그래서또그래서그런거있어요대신에뭐하면서이육비시에열내시가리포에지금지저로맞아들이는거니까소스지저부터소문이해서소문이보수할거라고제가생각해서그간부를좀걸어봐서그다음에소스가소문이해서이만큼은그간부를봐서대신에그래서야정말시원할수가있는거니까대신에그래서스타트
2: 가리포는보수하는분이시원해미프로포리토비시에만아버지가있으면그래서지금은나는나의얼굴이아니고이제남들이한번보셔보니까그런분이들어서뜻으로보니예수님다시는그런거다시는그런거이제공부하는게뭐냐면이렇게하는거지그래서또다시는우리가무엇을해야될지에대해서인생처럼살고또한번서내려보는지를보는거죠또시작하는것으로서도우리사회에는그비디오사실사실그런거가되는데아마존프로그램을하게되면그런사실만들어야돼이런인터넷상품들을내기그런거의성적인거예요어린이들한테나중에도저히그런거보이죠그래서제가그래서어떤것이냐면이런내가좀더그때다른거를보죠아니죠왜그런다른거를보는것이지금프로그램에서이것도무슨것을생각하죠그래서말씀은미디어비참으로서는아니요그런미디어렉터리그런플레이어로서그래서말씀은미디어가되는것이플레이어로서그래서말씀은미디어비참으로서는미디어는역시그프로그램의유효하고그리고오디오디렉션으로서는그래서그런거얼마인지그래서비디어는비디어비디어는그래서아니요말씀을받았을때프로그램을보이는데디에어나디에어는프로그램을하지아니그런거플레이어로서는그래서말씀은대회가대회에서당국들과대회가자리에서떠나떠나더블루를또한번의수술을하여기하니오일에서아직까지포커스를보내면안되죠보내면그걸볼컴퍼니를잘보내면지수가애들이라면서그리고난처럼우리가지수보내면잘보내면안되잘보내면애들이라면서그래서난처럼비해비를쓰는비해만우리가지수를하는데이걸말해야하고이걸보내서그래서이렇게생각하면서우리가얼마나더많은것들을가져갈지지금에서발견이프로그램이오고있는지요지금보시는순간에이미지를가지고내가알고소원을드리는거아니면괜찮게생각하고하나부터하는뉴스에대해서부터아무튼도움을드리고이런생각을하고있습니다그래서제가좀디스트랙시켜서아니면멀티셰프로어플리스마트시켜서오해만한번플레이스를해야죠
3: संसार सबै भन्दा उपयुक्त माध्यम हो जसले पोषण सुधारका लागि इच्छित भन्दा छिटो जानकारीहरू र स्थानीय भाषामै बुझ्ने गरेर प्रचार गर्न सकिन्छ त्यसको लागि सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय लगभगमा स्थानीय प्रश्नहरूको सङ्कलन गरेर त्यसको सही जवाब सम्बन्धित विज्ञहरूबाट लिएर पोषण सुधारमा सहयोग गर्न सक्दछ तपाईँको यही निष्कर्ष सँगसँगै कार्यक्रम पोषण संवादको निर्धारित समय सकिसकेको छ कार्यक्रम पोषण संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रश्न प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रम पोषण संवादको आजको भागबाट राजनीतिक साथी राजनीतिक विभागलाई धन्यवाद दिँदै

ही रहा है वहां पर जबकि समझ की गई हो सकता है जनप्रतिनिधि विशेष काम कर रहा है कार्य निर्माण कर रहे जनता इसके लिए द्वारा है।

0: साथ में रहा। नमस्कार, मेरा नाम खुशीराम ठाकुर, ये बटपटा वार्ड नंबर 4 13 तारीख है। हमारा 4 जन गीत गाई थी। नाम हमारा खुशीराम ठाकुर है। अन्य भावना बाल कुमारी सुजन जी।
1: आज मोदी के समाचार खुशियां कुमारी बस्ती नगर परिषद के नाटक कृषि का भी जीवन करते है कागज के चुनाव था नहीं हम बच्चे को रहना है।
2: नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, हेलो, नमस्ते। कहाँ बात हो?
1: किसान कार्ड के तहत मोदी ने भाई मदद होता
2: और वाला से आया किसानी कार्ड तो सौ नंबर वाड़ा वाड़ा से वितरण हुई कई दिन पास है वाड़ा मत से होके खबर करे तब आए और घर घर में काम आवे तो खेती पाती
1: ठीक है वहाँ हमने
2: तो धान लगाई पाती है धान लगाए कर हम 20-25 दिन हुई बिल की नहीं मगर ना हमने सबसे सुनी नहीं है तब ड्रेसिंग देखेगा
1: ये सिंपल काम हो तब
2: जब हमने की बाजी हुई गुरकटी जाए पढ़ते जाए 20-25 दिन पास है उम्र से मल डालना का और ये पहले तो डाल दिया था मल उम्र की निचाई फिर अपना मल की 20-25 दिन रात को ही लाओ साथ में मल डालना की निचाई अब ड्रेसिंग कई चाहिए अब तो कई दिन हुई धान लगाए
1: तो ये 25 दिन हाँ वो आगे तो एक दस दिन तक चीते नहीं मर अब फिर कई दिन पच्चीस चीते अब नहीं मर सर
2: मर बड़ा मजा समय में आएगा तो पूरी अंतरा है तन के चीते साखा भाग से 20-25 दिन पास से हमने लगभग करीब 20-30 दिन के बीच तब फिर सीखे मर चीते पड़ी होकर बिरुवा तले मार्ग में पानी ज्यादा पानी नहीं हुई था वहाँ मट्टी में ज्यादा पानी नहीं हुई था वहाँ कहीं धार देना से वो वहाँ से मजा पीजी बिरुवा होकर
1: एक कठा मतलब पता पता छेद ना हो तो बता दिन एक सौ सर
2: वो एक कठा वो हमन हो गया हमन के बाली कैसे बावे हमन के बाली कैसे बुन फसल बावे हमन के बिरुवा पहन बावे की तनी झुकल बावे की हमन के खला हंस बावे की हमने कैसे धान लगाने बाटी मोटा मंचीन हो हमने के नार लगना वाला खलुआ उचुआ कैसे मिले हाँ उससे हमने के ठाम हो बिरुवा उधर के प्रवृत्ति है दे हमने मजा से रानी पड़ेगा ज्यादा पानी छिड़ना हमने बिहार में करीब घाम लागत में घाम लागत का करीब 6 बजे से 8 बजे से बिहार के समय में संध्या घूम कर हम लोग घाम डूबी नहीं 4 बजे 5 बजे से 6-7 बजे से मल की हमने छीन ली तो बड़ा मजा से हम उनके बाद नाली फसता है मौसम के हमारे गाँव में हम भाई बेमने तो पड़े नहीं भाई जी कहाँ मौसम आज कल कहाँ पानी आई कहाँ पानी जाए कहीं ओकर लाख से हमने से नेपाल सरकार के पैसे ना लाग ना हमारा नंबर पावे 11-55 नंबर फोन कर भी तो हमारे के पास कर एक मौसम कैसे बना बनते हैं मौसम कैसे बना कहीं के वो मासे भी पता नहीं कैसे हमने हम काम आगे बढ़ाए
1: हमने ये नंबर बाजे लगी अब जान लगी सारा भी नंबर फोन करके
2: ये से आगे आपने अपने धाने पैसे तो मर चुके
1: हमने

0: 15. Now I did give the half one back to say, what you did to have given Adi?
1: We might have to have a grand daddy, Banim, he must have to get the support in the big hour. I'm on the material that way, Banim Adi here. I'm on the partner has with the pine has with the Kadi, Kadoshman giving a kissing the Okila, rather than the Kadi. I didn't do him, I don't know. And Tarzan, someone like Tarzan, I don't know. If Patam, Pasco Tarzan, we might say, someone here. हमने मौसम है कि वही सामान की एक कथा करी हमने के पानी नाली ठीक है मतलब आज हम करें चार पांच का किलो की हिसाब से कर मजा से है कि तीन किलो से पांच किलो से मजा मजा आ चाहिए ये माल अपना करें से भी ये हमारे से माल से समय डालना और मौसम है कि फिर कहीं ना ध्यान बिल्कुल फिर कहीं ना हुआ मैथमेटिकल ऐसी कुछ बिल्कुल कहीं के चेक करेगा बस करना और पालिका किसी भी का सहायता मांगे अपन मट्टी का चेक कराए सकती थी ना
0: बीस पच्चीस दिन कंसिडर कर ली डाल के क्योंकि हम बीस पच्चीस दिन तो अब पहले तरफ सर कैसे कई तो तारीख तरफ तो
1: मौसम तो कितना समय ना बिलों डाल ले सर और बीस पच्चीस दिन डाल लो दूसरे चुटकी के और एक चुटकी हमारे के घर में कुटना मेरा समय रात में जो हमारे के बारह कुटना समय रात वो भी रंग थे रस्ते वो रंग थे कब जैसे सिंह कहेंगे हमने माल डाले सर भी तो एक भी तीन चुट माल डाले पर ना एक चुट लगाने में लोग डाल सकते हैं एक चुट अब बीच समय बीस पच्चीस दिन में डाले अब हमारे के धावा कुटा समय फिर ये रेगुलर से हमने टॉप रेसिंग कर भी तो हमारे के भाले नारे बड़ा मजा हुई ले ना आई थी नारे बात कई थी नारे काम घर में फिर सही सी नहीं सोचना सब तो जाना नहीं होगा
2: ये परिस्थिति हम सुना परिस्थिति ना हम लोगों को पच्चीस दिन में हम बच्चे ना

0: सुरक्षित परिवार। रेडियो पूर्वाभा एफएम द्वारा सुरक्षित मजा आई संदेश
1: आओ करें।

कंबाइंड व्हील राइसविल चार मशीन हार्वेस्टर सब कटर है पशु पक्षी का दाना बनाने प्लेट मशीन महीना का संचय खेती किसानी करना सब मेरी समान उपलब्ध था कृषि का मशीन के पीछे छूट में ऊपर आ जाए खबर कल से खराब मजा तो पेपर आने था हजुर कामले कृषि सम्बन्धी कम्लो सामान किन्न साथी यदि चल्ती कलसे सामसातिर पाँच सडी मरम्मत पशुपतिनाथ सप्लाई छ सम्पर्क नम्बर 9855252014 हो 9825240 नवजीवन सहकारी संस्थाको पछि पुरानो

करना चाहते हैं कि हमारा संस्कृति मुका गहराए था तो मैंने सबको काम करे एकदम जब जितना ज्यादा एकदम अपन संस्कृति का जाता नाच गाना हो तो मैंने तो जो तो आज का बराबर के लिए

श्रीमान रक्षा करे राखी बांधे डोरा बांधे मैंने जने पूर्णिमा मैंने लगाए करके मैंने कहा कही भगवान अच्छे को जो कहते भगवान मारी तो भगवान बताई तो भगवान लंबा लंबा जी को भगवान लंबी लंबी लंबी जी को भगवान मुझे तो अपन अपन खाद की अपन अपन किस्मत जन्म मात्र न जन्म मान के जो भगवान करके तब ने मैंने भोगे करी तब ने मैंने रहिए करी अच्छा दिन में जाए तो पाली कमाई मैंने यहाँ ये दुनिया में आए लगी तो संसार में इस तरह से छोड़ के हमें जाए पर मैंने स्वर्ग में कोई पाप पर होकर नरता में तो कुछ और नहीं हो एकदम ईमानदार के साथ मैंने ईमानदार के साथ चली एकदम पूरी चल रही रख चल रही मैंने डांस हुआ डाल चला मैंने नंगा पटा ली ऐसे मैंने राय करी तो मैंने ये मैंने स्वर्गम देखो चार चारू हुआ डांस पूरी चल रही था तेजा ड्रेस आज तक के करके ना मैं तो नाम जानू पहले निकट तक को लाते संकट पुलिस कर लाते तो मैंने ये राय करी हो ये है मैंने नरकम थी पर मैंने हो अब जब पाए जब भगवान कहते कि ये मैंने जा पाई कमाई कहते हाँ जाए तो कई वर्ष रहते तो जब तंग वो टक्कर आती नहीं ली थी कहते दुख दे उड़ी थी चिंता से खुद करे उड़ी थी कई तो लड़का जन्म भी उड़ी थी कहते सुखे मरते कहते दुखे मरते कई लड़का जन्म भी बुढ़ाते में उड़ी थी घोटे

अपने तीस वर्ष दक्षिण एशिया का कार्यक्रम श्रेया स्टेडियम घूमता गई थी। उन्होंने भी पुनर्प्राप्ति का प्राथमिक बल दिया। उन्होंने कार्यक्रम का सुझा था मुन्ना कल्याण ठीक कर करूँ ठीक है विजय से बताया वो गीत कभी तो गीत की रखी सर का कुकी करते फिर उन्होंने पूरे फोन को फिर उन्होंने पहले दिन को वो यहाँ के सुनाने को ताजे की घूमता देखने की

0: 定是真的吗？真的可以过来？
1: बिंदु सौदरी बढ़िया का गुलरिया में रहना कारागार में सजाए भुगतान का तिरलत कई दिख कर परिवार से खर्च और रुकना बात पत्र या व्यवस्था शुरुआत कई कृपा कारागार में मौरी पलन पास कारागार में सजाए भुगतान का तिरलत कई दिख कर परिवार से खर्च और रुकना बात पत्र या व्यवस्था का शुरुआत कई कृपा को कारागार में मौरी 2083 में तीन महीना से ध्यान समझे परिवार का सदस्य से ध्यान खाट करने परिवार बनके निवेदन देना से अभिलेख ठीक और तीन महीना में ध्यान में एक ख्याल वर्चुअल माध्यम से बात बताई देना व्यवस्था कर जरूरत जमा देगा कारागार प्रशासक प्राकल ठामों से ध्यान में 15 मिनट शाम बात बताई पहला व्यवस्था निमावली में रहा था नमा समय से परिवार से ध्यान खाट करने परिवार पंती उपाल रचित कई का असीम व्यवस्था कई को कारागार प्रशासक जितेंद्र बहादुर शाही के अनुसार नमा समय से परिवार को सदस्य ध्यान करने परिवार कैदी निवेदन देने से फर्जुअल माध्यम से बात पत्र देना व्यवस्था मिला देगा कारागार का खरीदार तथा सूचना अधिकारी रवि कुमार थारू का कारागार का पुरुष बंदी 4 से 5 जना पुरुष कैदी बंदी वो महिला बंदी में 69 जना महिला वो 3 जना आशी बाल बालिका गलत जानकारी दिलवाच सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता वो दिगो शांति का कामना करके नेपाल दशमा इस्लाम धर्म मोहम्मद देव मनिलबाट नेपाल दश का मेरे मेरी ठाउँ से सहभागी र शांति सहिष्णुता वो आपसी सम्मान में से किला दिगो सद्भाव कायम कर सेना बटोलेबाट यी वर्ष कल्याणी परिवर्तन जोशी पराप आवाज में डीजे तथा बाल प्रयोग निकरण पास हरियाली शांत उत्सव पेदिक प्रद सामाजिक अभियान का मेन बहादुर मल्ल यी वर्ष का मोहम्मद देव शांत सभ्य रूप में न्यूतलत बटेर रैली में गैर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति समेत सहभागिता जाने कर सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया मेरे भरी ठाव सहभागी बन पानी मिठाई चुसो बिस्कुट वितरण कर समाजसेवी तथा दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एक धर्मावलंबी और धर्म का सम्मान करती सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव पर विनर बटेर बाट वहां रैली का सहभागी बन पानी चुसो बिस्कुट बांटना नेपाल महानगरपालिका 18 को राजस्व दीपक वर्मा बीपी चोक में रैली सहभागी रूपान मिठाई पानी पर टीटी को शांति का लक्ष्य समुदाय को भूमिका महत्वपूर्ण रहना पटरी बाट वहां के अनुसार दिगो शांति ने समृद्ध और विकास में समेत सहयोग पुग्न में जोर दे रहा नेपाल का 7 निवासी मुस्लिम मकुआ तथा जामा मस्जिद का पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद जियाउल हक देशवासी का सुख शांति समृद्धि हो दिगो शांति का कामना करती रैली में सहभागी बटेर बाट भाई वर्ष रैली पैदा तुलना में थप सभ्य व्यवस्थित हुए बटेर बाट शांतिपूर्ण रैली बेरबेर का समुदाय का सहभागिता हो आपसी सम्मान का गतिविधि नेपाल पंच का धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव को संदेश थप बढ़कर भैरक सहभागिता बटेर बाट बांसुरी नगर पालिका पैलक वर्ष से जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करना श्रमिक भुगतान का लाभ निःशुल्क दुर्घटना बीमा लागू कर इसलिए श्रमिक भुगतान को जीवन सुरक्षा सहज बनाएगा ये कार्यक्रम में पैलक वर्ष 138 जना श्रमिक दुर्घटना बीमा कराइल बाट श्री सक्रिय पुष्पा चौधरी एक रिपोर्ट
0: अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने श्रमिक न तो दैनिक काम को सुनिश्चित न तो उनको जीव जान को सुरक्षा श्रमिक लामो समय समय को संघर्ष माग पी स्थानीय सरकार ने दुर्घटना बीमा का लगी संबोधन करो बासरी 3 उत्तर बखारी की राम कुमारी इसी खुशी बांधे
2: जहाँ जहाँ पक्षे थे वहाँ वहाँ देखूँ काम करे जहाँ

0: स्त्री बड़ी जड़ी बूटी उद्योग हम प्रॉपर्टी जड़ी बूटी उद्योग इतिहास की मांस ज्ञान विषाक्त चीज सब को औषधी उपचार करने हमी औषधी उपचार करते
1: संदेश

उसका विकास नहीं करता, विकास होगी नहीं होगा, तो जल्दी का दिन ज्यादा

कांग्रेस संबंध बढ़ाऊंगी। इस प्रकार को महाराज द्रोह को निम्ति दक्षिण अफ्रीका कानून ब्रिटिश कानून पर आधारित रोमन दर्शन परंपरा में आधारित थी। महाराज द्रोह सरकार को सुरक्षा और स्वतंत्रता को लागि खतरा बन सकते सरकार क्षति पुराने सकते इसको दंड मृत्यु थी। प्राथमिक परीक्षा को उद्देश्य सरकार द्वारा लगाई अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में मुद्दा चलाने को लागि प्राप्त भएको निश्चित गर्नु थियो। अभियोग प्रमाणित गर्नको लागि यदि कुनै मजिस्ट्रेट को न्यायालय द्वारा अभियुक्त विरुद्ध को प्राप्त प्रमाण जुट्यो भने स्थिति को निर्धारण को लागि सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय को सम्मुख में पेश गरिन्थ्यो। मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त प्रमाण नजुटे को खंड में अभियुक्त मुक्त गरिन्थ्यो। मुख्य मजिस्ट्रेट एफसीए बेसर ग्रुप फन्डेड सानो आवाजमा बोलेपछि सरकारले लाउड स्पिकरको व्यवस्था गर्न आनाकानी गरेपछि न्यायालय स्थगित गरियो। हामी सबै एकत्रित भयौँ। बाहिरबाट खाना आएको हुनाले सबैले खाना पिकनिक चाहिँ उत्सवमय रूपमा प्रकरण गर्यो। दिनभरि पनि लाउड स्पिकर जुट्न नसकेपछि पुरातिको निम्ति न्यायालयमा अवकाश घोषणा गरियो। भोलिपल्ट दुई घरमा हामीले तिनजना जस्तो ठाउँमा लगेर राख्यो। त्यहाँ पुलिसले घेराबन्दी हालेका थिए। हाम्रा वकिलले तिनजनाभित्र आउन नदिएको हुनाले कुराकानी गर्न पाएन। मेरा एक साथीले कागजको टुक्रामा लेखेर केही लेखेर बिचरा पाएर छिराइदिए।

भी उड़ा पाएगी, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वाल टूटा हुआ एक दूसरा घेरेगा मच्छर यहाँ से इसी पर महामिले बंदी बनाया रहती है हफ्ता से मच्छर मारा थी। तो इसमें एक दिन मैं एक पटक भेजना है और त्योहार में छोटा होने पर प्रसिद्ध कहा छोड़ेगा तो इसे एक लाइन से और यह पर्दा सुनो अपनी लीला बोलेगी थी।

युद्धीय को भाषण का की पक्ष का शासक अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भाषण का भाषण का की उद्धार लिए जाते प्रोफेसर मरे थी

साथी सोलोमन उपस्थित उनका परमाणु सभी महेश द्वारा झूठा साबित करे। पुलिस जारी सर्टिफिकेट असंवैधानिक रूप में प्रश्न दिखे अपराध करते आये महेश ने खुलासा करी थी। अंतिम उनके उमेश राई सोधे कि तब था बदला कस्त होने बोले मैं ठा छेन महेश चिचाने बोले श्रीमान जी तदास सुलोको एक अभिज्ञ थे और श्रेष्ठ उत्तीर बनी थे। मुझे आपका बचाव स्वयं करे मैं नियम को उल्लंघन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ने नगर सरकार ने गई को छा भर प्रमाणित कर दी। सुलोको को तर्क बनी महेश को तर्क नहीं धमकार मिलते अफ्रीकन सदस्य को शाखा का सदस्य तथा जासूस जेरी बिया मंसाल ने

दल पार्टी को राजनीति को एक स्तंभ बनी थी। पर्याप्त समय से वहां राष्ट्रवादी तथा हिटलर और

संबंधी के विरुद्ध बड़ी स्पष्ट हो गई थी। सरकार हमने श्री भय अपने हराम चाहते सरकार हमें विरुद्ध प्राप्त प्रमाणित करने न सके घोषणा करी थी। तेरह महीना को प्रारंभिक परीक्षण पति मस्जिद ने हम तारीख प्रवाद सुप्रीम कोर्ट पठाने को प्राप्त कारण मिले निर्णय थी। जनवरी मास स्थगित करो प्रचार के प्रतिशत अभियुक्त तारीख

संपर्क बनाए कि वो इतने गरीब यूरोपीय नेता से जो विवाह करते हुए जिसका वो नहीं करते। ये बड़ी समर्थन पत्र को लागू

तो उसमें आए थे ना, तो ये कुछ जहाँ जेठो दादी को मैं विवाह को पार्टी बनाए उनको बार बहुत ही बहुत से पुस्तक नहीं गाँव थी विवाह को कारण